इजी एआई टीवी मा हेर्नुस फुटबल को हर एक एक्साइटिंग मोमेंट एआई पिक्चर एंड साउंड संग अप टू 30% कैशबैक र 0% ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू प्लस 4 इयर्स फुल वारंटी अब घरमै स्टेडियम एक्सपीरियंस एलजी लाइट्स गुड.

0: 爷，求求求求求！
1: 哎子，哎子，哎子，
0: 求求求求！
2: 来吧，小阿子，罗巴罗来，浪漫不拿罗巴罗包水。
0: 混子，混子，莫在上天雷包水。
2: 哎，那我算了。और क्या कुछ औरी पनी कौती तौरु नहीं भाई साकी चाहे
0: बोला भाई लेना भी है तो धेरे पे भाई सा यार
2: आज तो हिलो मत चले छापन पर तो साइन लल्ला
0: ला ला ला
2: ला शुरू करो ना शुरू करो ला आप शुरू करो
3: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
4: ला
3: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला
5: बर्खा को झरी रुजाउला झाई गरी यो असारे महिनामा

0: छिटो जा रहा, सात पर लाइस झांगी बाहन लाइस छिटो जा रहा, लाठे रोपार पर भोकाई सको
1: याद।

0: कईयों रेडियो, हजारों रेडियो कर्मी र करोड़ों नेपाली को माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN.
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला रात को 9 बजे.